0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: चांदनी रात

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: कुसुम
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
3: क्या बात है सर क्या पर ये बात है

ही मेरा रब, तू ही मेरा सब, जो आके मैनू छूं ओ हवावां विच तू, दिल विच तू, साहां विच तू, मैं जित्थों मिलूंगा ना राहां विच तू, इको आ दुआ मेरी उस रब नूं।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

हर टेनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: A very good morning. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aage ji aapke saath bindaas mornings lekar. Kaise hai, kya haal chaal hai? Sunday ka din, August 2nd, naya mahina, pehla hafta. I hope full positivity aur enthusiasm ke saath hum isme badhne wale hain. कोशिश यही रहेगी कि यहाँ गानों से आपका मूड इतना बढ़िया रखे कि आज जब आप ऑफिस जाए तो किसी भी चीज़ का बुरा लगे ही ना. हो जाता है यार, छोटी मोटी बातें, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी किसी और को आ जाता है, बट इट्स ओके. ठीक है, नो बिग डील. हर दिन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता रहता है. अगर हम उसको लेकर बॉदर करते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो यार ऐसे कैसे चलेगा मेरी जान. This beautiful track और साथ में ये भी

0: रांझना वॉज सच एन एपिक मूवी. आई थिंक यू नो आने वाले और कुछ 5-10 साल में इसे वन ऑफ द एपिक्स माना जाएगा.
1: वादा करो नहीं छोड़ो कि तुम मेरा साथ.
0: नेवर.
1: जहां तुम हो वहां मैं भी.
0: यही मैं आपसे बोल रही हूँ, जहां भी आप हो मैं आपके साथ हूँ. चल रही हूँ, ऑफिस जा रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ. और अगर आप इस वक्त बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आई एम हियर फॉर यू मेरी जान. मुझे मैसेज कीजिए, बताइए कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और एक प्यार सा गुड मॉर्निंग भी भेज दो 3311106 पर.
2: जश्न मनावण दे सजन मैनु इश्क निभावण.
0: ब्यूटिफुल. दिस मूवी इज ऑल्सो रियली क्यूट, मतलब बड़ी सुंदर. रुलाया था मुझे इसने. सो बहुत सारी बातें करनी है आपसे, ढेर सारी चीज़ें लेकर आई हूँ और बहुत कमाल के गाने लाइंड अप है, वो तो आपने सुनी लिया है. तो फटाफट से मैसेज कर दीजिए पहले 3311106 पर और सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ जियो बिंदास.

0: विशाल मिश्रा के आवाज में मेट्रो इन दिनों से मनिये मेरा ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और मैसेजेस आ गए हैं मुझे गुड मॉर्निंग वाले, कुछ तो मेरे आने के पहले ही आ चुके थे. सो अबरार जी का मैसेज है, हैप्पी संडे. द मोस्ट ब्यूटिफुल वे ऑफ लाइफ इज टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव lived every day without any regrets. हाँ जी, एकदम करेक्ट बात है. आई थिंक टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ ग्रेटफुलनेस ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर जो है ऑलरेडी आप उसमें कंटेंट महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आगे मिलेगा या नहीं इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि भाई जो है वही इनफ नहीं लग रहा है. सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, दैट्स हाउ यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस इन योर लाइफ. साथ में नाजनी जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग. इन द गार्डन ऑफ लाइफ ट्रू फ्रेंड्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स दैट नेवर फेड. यस, आज इंडिया में हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे है और उसके लिए एक बार फिर से हमने तो 30th को सेलिब्रेट कर ही लिया था, बट एक बार फिर से हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे मेरी जान. एंड शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज है, Unexpected results and problems are part of life. Never lose hope in any condition because darkness of night always ends with light of the day. That should be the spirit to lead the life. क्योंकि as I said, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है यार लाइफ में, उस पर पॉन्डर करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई. यासीन अब्बासी जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग यू टू, हैव अ नाइस डे जी. इमरान जी का मैसेज आया, कहते हैं हाई आई एम इमरान, गुड मॉर्निंग क्वीन ऑफ एयरवेव्स आरजे तनीषा. ओहो, ये बन गया मेरा दिन. Another day, another fresh chapter to paint with your amazing voice. Please play this track. Nena thaglenge. Sure enough, it, I will be playing that one for you, Imran. And Santu ji ka bhi message aa gaya hai ji. Good wali morning. Unki happy wali thi. Meri taraf se good wali morning hai ji. And I hope this Sunday brings lots of hope and positivity and happiness for the entire week for you. Yes, sir. Baki abhi badhiya gana to lekar aa hi gaya hai ji. Cool song of the hour bhej rahi hu aapke liye. Dr. Palash Sen ki awaaz mein Mairi. Stay tuned and Jio with us. Awesome. Radio Olive par aane wala gana Cool song of the hour.
1: Kya baat hai sir? Kya baat ye baat hai?

0: तनिषा
1: शान की आवाज में वो पहली बार जब हम मिले ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर एंड अब मुझे नाजरी जी ने याद दिला दिया है कि आज इंडिया वाला फ्रेंडशिप्स डे है तो मैंने कुछ लिखा था आई वांट टू डिसाइड दैट फॉर यू सो सुनिएगा दोस्त क्या है जो कभी हमें हमारे सही नाम से ना पुकारे जो तुम पर अपना पूरा हक जताए आई फील कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं अपनी लाइफ में आके यू नो हम अपनी मर्जी से उसे निभाते हैं हमें जन्म से तो बहुत सारे रिश्ते मिले होते हैं बट दिस इज़ द वन रिलेशन इन आर लाइफ जो कि हम खुद चूज करते हैं रंग रूप से चाहे अलग हो विचारों से अलग हो लेकिन कहीं ना कहीं मन का एक तार जिससे जुड़ जाता है वो दोस्त है जिसके बस साथ होने से ही सब सही हो जाए जिसकी जेब खाली हो पर तुम्हें साथ घुमाने के सपने दिखाए जिसकी खामोशी तुम्हें सताए जो कभी वक्त पर ना आए तुम्हें इंतजार करवाए जो किताबों से बहुत दूर हो पर तुम्हारा चेहरा झट से पड़ जाए जो हर हालात में तुम्हारा साथ निभाए जो तुमसे सवाल ना करे दुनिया से तुम्हारे लिए लड़े दोस्त वो है जिसका कंधा तुम्हारे आंसुओं के लिए हमेशा रिजर्व्ड है वो साथ है तो लाइफ सेट है ना आई एब्सोल्युटली लव दिस यू नो द फ्रेंडशिप इट इज द मोस्ट प्रेशियस एंड मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इन आवर लाइव्स तो अगर आपने अपने दोस्तों से बात नहीं करी है उन्हें विश नहीं किया है अभी तक तो दिस इज योर साइन मेरी जान फोन उठाओ और कर डालो ठीक है और सुनते रहो रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास

0: राहत फतेह अली का साहब की आवाज में बड़ा सुंदर गाना, नैना ठग लेंगे। आई वुड लाइक टू थैंक इमरान क्योंकि उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था, इतना सुंदर गाना हमने सुना। एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM तनिषा, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं। यहाँ पर कदर एनर्जी ने फ्यूल प्राइजेस फॉर अगस्त जो है वो रिलीज कर दिए हैं और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। प्रीमियम गैसोलीन कम हो गया है इनफैक्ट। So the prices are 91 premium gasoline is 2 real in August, which was 2.05 in July. And 95 super gasoline 2.10 tha July mein bhi, August mein bhi same rahega. Diesel 2.05 tha July mein aur August mein bhi same rahega. So these are the fuel prices for the month. Jo bhi is waqt drive kar rahe hain, be very careful meri jaan. Aapka focus road pe hona chahiye. Phone won nahi use karna hai, theek hai? Seat belt to dekho laga hi lete hain sab, I know that, but in case you know, लगा लीजिएगा, ठीक है? आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं यार, इसीलिए हर बार कहती रहती हूँ कि अपना ख्याल रखा कीजिए। आपके आसपास के लोगों का अगर आप ख्याल रखना चाहते हैं तो उसके पहले शुरुआत खुद से करनी होगी। जी हाँ, सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Hour. Yeah, guys.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

उदित नारायण और शिव कुशाल की आवाज में सुपर 30 से ज्योग्राफी ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। नए घंटे की शुरुआत हो चुकी है, 7:08 हो रहे हैं क्लॉक में। This beautiful track is coming up your way और थोड़ी मटरगश्ती हो जाए जी।

0: it just relaxes you instantly, you know, like ऐसे light और chill mood में ले आता है. जितनी भी बार ये गाना सुनती हूँ मुझे जावेद बशीर साहब से पूछने का मन करता है, ये आपने क्या किया, इतना सुंदर कैसे बना दिया यार.
1: रब्बा मैं तो मर गया हूँ, शदाई मुझे कर गया कर गया.
0: And जी, all these amazing tracks are lined up for you. और भी बहुत सारे surprises हैं. फिलहाल बात करते हैं कतब म्यूजियम्स की, क्योंकि उन्होंने अपना अगस्त 2026 का जो प्रोग्राम है वो अनाउंस कर दिया है. बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है थ्रू आउट अगस्त, यू नो, बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, फैमिली एक्टिविटीज होंगी, यूथ प्रोग्राम्स होंगे, स्पोर्ट्स एक्सपीरियंसेस भी हैं, और स्पेशल प्रोग्राम्स हैं फॉर चिल्ड्रन एंड टीन्स, इंक्लूडिंग समर कैंप ऑब्वियसली, क्लब्स एंड एजुकेशनल वर्कशॉप्स. देयर विल बी आर्ट एंड क्रिएटिविटी वर्कशॉप फीचरिंग कैलीग्राफी, डिजाइन, पेंटिंग एंड हैंड्स ऑन क्राफ्ट. म्यूजियम मेमोरी गेम भी है, 10th and 17th August को ये होने वाला है. सो इट विल बी अ फन वे टू एक्सप्लोर म्यूजियम कलेक्शंस, यू नो, उस गेम के थ्रू. और स्पोर्ट्स थीम एक्सपीरियंसेस भी हैं, 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में, और लाइब्रेरी एक्टिविटीज में होगा स्टोरी टाइम, देर विल बी रीडिंग क्लब्स, देर विल बी एजुकेशनल सेशंस एंड इंटरैक्टिव कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं सारी एज ग्रुप्स के लिए. तो जाइए चेकआउट कीजिए कतब म्यूजियम्स के सोशल मीडिया पेजेस को और वेबसाइट को, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ जो है उन्हें प्रायर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, रेस्ट ऑफ देम आर लाइक फ्री. तो चेकआउट कीजिए, वट एवर यू नो फैसिनेट्स यू, एक्साइट्स यू, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपने बच्चों को लेकर जाइए और इन्जॉय करिए मेरी जान.

0: ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਤੂੜਾ।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Alia Bhatter, Diljit Dosanjh ke awaz mein. Urdu Punjab se ek kudi on your radio, 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain par. Radio Olive presents Blackboard Stories. ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में आज का जो सवाल है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ व्हेन आई वाज डूइंग ऑलिव रिचार्ज आफ्टरनून शो. तो अब देखते हैं अगर आपने सुना है तो वेल एंड गुड. नहीं सुना है तो दिस विल बी समथिंग रियली एक्साइटिंग एंड न्यू फॉर यू टू नो. सो दिस क्वेश्चन इज विच कंट्री डू ऑल बुक्स बिलोंग टू. एक कंट्री है जिसको सारी बुक्स बिलोंग करती हैं, वो कौन सी कंट्री है आपने मुझे उसका नाम बताना है 3311 1063 पर. और इसके पीछे एक बहुत अमेजिंग रीजन है, स्टोरी है, वो शेयर करूंगी मैं कुछ ही देर में. आप सवाल का जवाब दीजिए विच कंट्री डू ऑल बुक्स बिलोंग टू, कौन सी कंट्री से ओ सारी जो बुक्स हैं वो बिलोंग करती हैं. 3311 1063 और यू कैन कॉल 4444 1063 पर.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Tanisha.
1: Tanisha. Beautiful track in the voice of Javed Ali Sahab only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha hai aapke saath bindaas mornings chal rahe hain par.
2: Radio Olive presents Blackboard Stories.
1: ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में आज मैंने सवाल पूछा था कि एक ऐसी कंट्री जिसको सारी बुक्स बिलोंग करती है उसका नाम क्या है. सो आई हैव गॉट ओनली वन आंसर हियर एंड यस द आंसर इज बुकलैंड. बट देयर इज अ ट्विस्ट. सो बुकलैंड जैसी कोई कंट्री एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है. पहले सारी बुक्स में ISBN नंबर होता था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है, और वो होता था 10 डिजिट्स का. नाउ जब बारकोड आया तो ये रूल आया कि हर आइटम पे बारकोड होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी. बट अब बुक्स को हम किसी एक कंट्री से तो नहीं बोल सकते हैं ना, वो तो आपको लाइक ट्रैक करने के लिए चाहिए होता है. सो वट एवर थिंग आइटम विच हैज़ बीन ओरिजिन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, उसके बारकोड में जो फर्स्ट 3 डिजिट्स होती हैं वो उस कंट्री का कोड होता है. लेकिन अब बुक्स को आप ट्रैक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज असाइन कर दोगे तो वो तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा उस चीज़ का, राइट? इट इज़ टू ट्रैक एवरीथिंग डाउन टू वन प्लेस. सो दे डिसाइडेड कि क्यों ना हम एक इमेजिनरी कंट्री बनाएं एंड यू नो वो कंट्री सारी बुक्स के लिए एक ट्रैकिंग एंड होगा कि सारी बुक्स यहीं पे बिलोंग करती हैं. एंड दैट बिकेम द बुकलैंड. और बुकलैंड का जो कोड है वो है 979 और 978. आप कोई भी बुक उठाकर देख लें आपको नज़र आएगा कि उसके बारकोड की फर्स्ट 3 डिजिट्स जो है इट इज़ आइदर 978 और 979. दैट इज़ सो कूल. व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस फैक्ट माय माइंड वाज ब्लोन. मैंने जितनी बुक्स थी मेरे आसपास सबको जाके चेक किया. नाउ इट्स योर टाइम. जाओ चेक करो अपने आसपास जितनी भी बुक्स हैं उनके बारकोड की फर्स्ट 3 डिजिट्स क्या है और बताओ मुझे. और सुनते रहो रेडियो ऑल इट. जी बिंदास.

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.
5: Hey.

You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. थोड़ी मौसम की बात कर लीजिए. नेग्लेक्टेड सा फील कर रहा है बेचारा. अवॉइड करने वाला वेदर भी तो रखा है ना. इट इज 38 डिग्रीज राइट नाउ बट इट फील्स लाइक 42 डिग्रीज. क्रेजी ह्यूमिड हो रखा है. आप बाहर निकलो आपको लगेगा आप मेल्ट हो रहे हो. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. आज जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 45 जा सकता है और लोएस्ट जो होगा वो 34 हो सकता है. एंड इट इज क्वाइट हॉट दिस मॉर्निंग. सो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड और ज्यादा देर तक अगर धूप में रहे तो यू नो डिहाइड्रेशन के चांसेस है, हीट स्ट्रोक के चांसेस है. सो प्लीज ना जाए और अपने साथ यू नो इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है और लाइट खाना खाएं. You know the drill, right? So please do that for yourself. और अपना ख्याल रखो मेरी जान. और सुनते रहो रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: प्रीमियर कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई, वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: This is
4: Vani Bhanushali.
5: Hey, this is
6: Liana
5: D'Cruz.
7: This is me, Ritik Roshan.
8: Hi, I'm Alia Bhatt.
9: Hi, I'm Vivekanand Oberoi, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: You're listening to Radio 106.3 FM Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. तमाशा मूवी से बहुत ही कमाल का गाना सुना आपने एंड कमाल तो कल भी हुआ है. जी हाँ, सो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं आपको पता है एंड इंडिया ने कभी भी जूडो में कोई भी गोल्ड नहीं जीता था. लाइक कभी भी, एज इन 36 ईयर्स हो गए सो फार नहीं जीत पाए थे, पर एक ही शाम में दो दो गोल्ड जीत लिए हैं. जी, अस्मिता डे जिन्होंने विमेंस फाइनल 48 केजीज में जीता एंड देन अंडर 20 मिनट्स उसी के बाद हर्ष सिंह ने मेंस 60 केजी इवेंट में गोल्ड जीता एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब एक हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके साथ में डबल. दैट्स व्हाट हैपेंस यू नो, जब आप बहुत एफर्ट्स डालते हैं ना एंड यू डू नॉट सी कि भाई एक यही गोल है, यही चाहिए. आप बस एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है जो भी हुआ वो बढ़िया है, तो आपको और भी चीज़ें साथ में मिलती हैं एंड दैट्स व्हाट हैपेंड हियर. द हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन, कंग्रेचुलेशंस. और अभी गेम्स चल रहे हैं, इंडिया इज परफॉर्मिंग रियली वेल. बहुत सारे मेडल्स आ चुके हैं हमारी किटी में एंड दैट्स सच अ प्राउड मोमेंट. ऑन दैट नोट, सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास मेरी जान.
1: कूल सॉन्ग
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
1: Awesome.

आशा थैंकी आज में शरारा शरारा फ्रॉम द मूवी मेरे यार की शादी है ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और हर रोज कुछ क्रेजी होता है दुनिया में. आज भी मैं कुछ क्रेजी आपके लिए लेकर आई हूँ. सो चाइना में ओरियो बिस्किट या और साथ में एक फ्राइड चिकन ब्रांड ने मिलकर ऐसे फ्राइड चिकन फ्लेवर्ड कुकीज बनाई है. क्यों? Why would you do that? I was just contemplating on the taste कि कैसा लग रहा होगा वो भाई. स्वीट एंड सेवरी एंड ऑयली एंड बटरी ऑल टुगेदर. आई मीन इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग. आई डोंट नो, सम पीपल माइट हैव अ टेस्ट फॉर इट एंड सम माइट नॉट लाइक इट. बट यू नो, स्वीट एंड सेवरी वाला जो एक फ्लेवर होता है साथ में अगर उसे मिलाओ तो कई बार वो बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग और ट्रॉमेटाइजिंग भी हो जाता है. मेरे लिए स्वीट एंड सेवरी का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज पोहा एंड जलेबी. आई कम फ्रॉम इंदौर. हमारा वीकेंड का जो पेटेंट नाश्ता होता है वो होता है पोहा विद जलेबी. एंड वेन यू नो पीपल हियर गॉट टू नो अबाउट दैट, लाइक यू नो सुदेव एंड अदर फ्रेंड्स हियर, तो दे वर लाइक आर यू मैड, पोहा इज नमकीन, उसके साथ आप जलेबी कैसे खा सकते हो? सो या दैट्स द थिंग, इट टेस्ट सुपर यम और बहुत अमेजिंग टेस्ट करता है. बट सबके अपने अपने यू नो चॉइसेस होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं. तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपका ऐसा कौन सा स्वीट और सेवरी वाला एक कॉम्बिनेशन है जो कि लोगों को वियर्ड लगता है बट यू एब्सोल्युटली लव इट. 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए और सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ जी. ओपन दास मेरी जान.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

You're listening to Radio 116.3 FM, Tanisha aapke saath. Bindaas morning chal raha hai yahan par. Aur kuch der pehle humne, you know, weird sweet and savory combos ki baat ki thi, jo ki कुछ लोगों को पसंद आते हैं कुछ को नहीं पसंद आते हैं. माई फेवरेट इज पोहा एंड जलेबी टुगेदर एंड अ लॉट ऑफ पीपल यू नो गिव मी वियर्ड लुक्स अबाउट इट बट या आई लव इट. देन मैंने आपसे पूछा था कि आपका कौन सा ऐसा यू नो फेवरेट कॉम्बो है स्वीट एंड सेवरी डिश का जो कि लोगों को वियर्ड लगता है. मुझे आसमा का मैसेज आया है, अपना तो नहीं पता पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को गुलाब जामुन में पिकल्स डाल के खाते हैं ये सुना है. साउंड स्ट्रेंज. ओ माई गॉड, गुलाब जामुन में पिकल्स? वाई वुड यू डू दैट? आई हैव हर्ड पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग दीज गुलाब जामुन वड़ा पाव. व्हाट? कोई सेंस बन रही है इस चीज की? देन वेंकी का मैसेज आया, पोहा एंड केचप. नो नो, आई ड्रॉ अ लाइन ओवर देयर. मुझे ये भी नहीं पसंद व्हेन पीपल पुट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन पोहा. नो, पोहे में इतनी सारी सब्जियां नहीं डलती. बट ठीक है, टू ईच ऑफ देयर ओन. मुझे कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. एंड देन देयर इज समबडी हु सेड चॉकलेट खाखराज. दैट काइंड ऑफ साउंड्स इंटरेस्टिंग. एंड चॉकलेट सैंडविच. ओके, चॉकलेट सैंडविच इज नाइस एक्चुअली. आई मीन डिपेंड्स आप कहाँ से खा रहे हैं, बिकॉज वेयर आई हैव ईटन इट वॉज रियली नाइस. एंड देन देर इज आइसक्रीम वड़ा पाव. नो यार, वॉट इज दिस आइसक्रीम वड़ा पाव, कौन खाता है? देन सम पीपल आर सेइंग चॉकलेट एंड चिली को साथ में, लाइक इट कैन बी अ चटनी और समथिंग एंड इट टेस्ट रियली गुड. ओके, बहुत क्रेजी निकल के बाहर आ रहा है. कुछ चीजें तो मैं ट्राई करूंगी इसमें से. चॉकलेट एंड चिली ऑब्वियसली आई विल ट्राई. वाटरमेलन फेटा चीज, यस दैट गोज रियली वेल, दैट आई ऑल्सो लाइक. एंड वी हैव हनी ऑन पिज्जा. हनी ऑन पिज्जा एंड पाइन एपल ऑन पिज्जा आर नो, बिग नो फॉर मी. आई हैव ट्राइड एंड वेरी पोलाइटली आई हैव डिक्लाइंड, क्योंकि नहीं हो पाएगा. वेल, जारी रखिए ये सिलसिला अपने क्रेजी स्वीट एंड सेवरी कॉम्बोज का. मैं अलॉट कराती हूँ कुछ देर में. स्टे ट्यून्ड, बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

0: दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद

Tanisha. Panwari from the movie Sunny Sanskari ki Dulce Kumari only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par. Aur Panwari gaana sunke to mujhe Rohit Sarafi yaad aata hai aur unki wo kamaal ka dance. Oye hoye hoye. Well, oye hoye hoye to aapki car bhi bolegi jab aap use lekar jayenge Valvoline AMTC Premium Quick Service on Salwa Road par. Kyun? क्योंकि हमारी कार को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है सही वक्त पर. जी हाँ, करवाते तो हैं पर वक्त लगा देते हैं. सो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू, इफ इट इज आस्किंग फॉर इट, प्लीज उसे लेकर जाइए वैल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस पर, क्योंकि वहां पर आपको जेन्युइन वैल्वोलिन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रीमियम फिल्टर्स मिलेंगे और साथ में डिजिटल कार पासपोर्ट जिसमें आपकी कार की सारी सर्विस हिस्ट्री बहुत हैंडी होगी आपके लिए. सो फटाफट से कॉल कीजिए 7765-5954 पर, 7765-5954 पर, और अपनी विजिट बुक कीजिए. साथ में अगर आप वहां से ऑयल चेंज करवाते हैं तो आपको मिलेगा एक मजेदार तोहफा. तो फिर मौके पे चौका मार लो मेरी जान और सुनते रहो रेडियो ऑल जियो बिंदास.

0: Danisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Danisha aapke saath. Bindaas Morning chal raha hai yahan par. Rangila movie se title track suna aapne Asha Tai ki awaaz mein. Aur ek baar phir se main aapko yaad dilana chahti hoon ki, you know, cyber attacks jo hai, cyber crime jo hai, hacking ho rahi hai kafi. So please khayal rakhe kisi bhi link ko, aise unknown link kisi ne forward kiya hai randomly, do not click on that. Koi document randomly aa raha hai from an unknown number, do not download it. Entertain mat kijiye. Aur you know, calls agar aapko lag raha hai ki it is a spam, मत रिसीव करो. मैसेजेस पे भी अगर कोई लिंक आ रहा है तो एंटरटेन मत करो. वेरीफाई करो चीज़ों को, उसके बाद ही यू नो मूव फॉरवर्ड विद इट. ठीक है, क्योंकि दीज पीपल हैव बिकम सो डैम स्मार्ट, तो हमें भी अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा. वी ऑल्सो हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली एंड स्मार्टली टू सेव गार्ड आर सेल्स. हमने इतनी मेहनत करके जो चीज़ें बनाई हैं, जो सेविंग्स करी हैं, वो ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते, राइट? सो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिए और थोड़ा सा सतर्क रहिए और सावधान रहिए. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू नो. आई केयर अबाउट यू मेरी जान, एंड आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गो थ्रू दैट ट्रबल. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. जबरदस्त हिट भेज रही हूँ आपके लिए. जियो बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha आपके साथ नाथ स्वामी की आवाज में साथिया मूवी से बड़ा ही प्यारा गाना सुना आपने और एक बड़ी ही अमेजिंग चीज पढ़ी है मैंने जो कि शंघाई में हो रही है सो वहां पर ऑफिस नैप्स के लिए लॉन बिल्ट किए जा रहे हैं जी हाँ सो ऑफिस के बाहर दे हैव क्रिएटेड लॉन्स जहां पर जाकर आप यू नो बहुत ज्यादा जब टायर्ड हो रहे हैं और ऐसे एक स्लंप में चले गए हैं तो यू कैन गो आउट देयर इन दैट लॉन लाई डाउन एंड टेक अ नैप और रिफ्रेश और रिचार्ज होकर फिर से अपने काम पर आ जाइए That is so amazing and actually ये होता है right जब आप constantly screen पे लगे होते हैं and you know constantly brain में चीज़ें चल रही हैं you're trying to figure things out और बेहतर कैसे करनी है चीज़ें कोई meeting है उसके लिए prep कर रहे हैं and then eventually it gets tired और जब हम mentally बहुत tired होते हैं ना हम physically tired feel करने लगते हैं और उसके लिए अगर छोटी सी nap मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए तो दिस इज सच अ गुड आइडिया एंड ऑल्सो जापान में भी ऐसे होता है कि अगर आप वहां पर अपने ऑफिस में बीच में सो रहे हैं यू आर टेकिंग अ नैप तो आपको हार्ड वर्किंग माना जाता है बिकॉज अगेन यही चीज है कि आप जब मेंटली टायर्ड हो जाते हैं तो आप फिजिकली भी एग्जॉस्टेड फील करते हैं सो आई लाइक दिस लॉन वाला आइडिया है ना वैसे कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं कि पूरा पूरा दिन वहीं पड़े हैं सो या ट्रिकी है Sending an amazing track, Mohit Chauhan ki awaaz mein rock star se stay tuned on Jio Bindaas.

0: माँ, मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू
2: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
3: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

अरिजीत सिंह की आवाज में जरा हटके जरा बचके से तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अच्छे जी, आज संडे है, मुझे चाहिए फिर से थर्सडे। यस, देख रहे हो आप एंथुजियाज्म इन द स्टार्ट ऑफ द वीक। वेल, आई होप यू गाइज हैव एन अमेजिंग डे टुडे। कल सुबह मिलती हूँ आपसे 6 बजे, वक्त हो गया मेरे जाने का। एंड कशिश आती होगी लाइफ मस्त है लेकर आपकी लाइफ को और भी अमेजिंग बनाने के लिए। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इफ़ यू हैवन फॉलोड अस ऑन सोशल मीडिया, radioolive.qu इज द हैंडल, फॉलो कर लीजिए और स्टे हाइड्रेटेड। अच्छा खाना खाइए, लाइट खाइए और ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है? आई केयर फॉर यू मेरी जान, इसीलिए याद दिलाती रहती हूँ। सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास।

ऑफ कोर्स गाइस वो जुगनू है, वो जंगल में ही रहेगा. मतलब जंगल में ये कैसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है बॉलीवुड, इसकी हमें कोई जरूरत तो नहीं थी. देखो ऐसे वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो अलिफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपके लिए यू नो आपकी लाइफ को थोड़ा और एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम बातचीत जो है वो जारी रखते हैं. एंड आ गई हूँ मैं अपनी लाइफ की मतलब पूरी पीक एनर्जी लेकर. सुबह जब मैं आपसे बात करने के लिए आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बॉडी की जितनी एनर्जी है सब आपसे बात करने में लगा दूँ, और फिर पूरा दिन ना मुझे नींद आती रहती है. यार मुझे बताओ कि मुझे ये जो है जारी रखना चाहिए या आपसे जो है ना थोड़ा आराम से बात करना चाहिए कि हाय गुड मॉर्निंग कशिश बोल रही हूँ मैं. नहीं यार ऐसे तो बहुत ही लो हो जाएगा ना. 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, आइए मेरी एनर्जी को थोड़ा और बढ़ा दीजिए एक प्यारा सा मैसेज करके. गुड मॉर्निंग हाय हेलो लिखने में क्या जाता है आपका, जल्दी से फोन उठाइए 3311063 पर आकर मुझे मैसेज कर दीजिए. बाकी आज बहुत सारी अमेजिंग बातें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. बॉलीवुड की गपशप हम करने वाले हैं, हम फैशन की बातचीत करने वाले हैं, और ऊपर से आज है इंडिया में फ्रेंडशिप्स डे मनाया जाता है आज के दिन, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे. हमने 3-4

दिन पहले मना लिया था, लेकिन आज नेशनल फ्रेंडशिप डे है इंडिया में. सो देखो, बचपन से मैंने यही वाला मनाया जो हम अगस्त के फर्स्ट संडे पे मनाते थे. तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे वाले दिन ना मेरे को उतनी फील नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपसे आकर बात करूंगी फ्रेंडशिप डे के बारे में. सो आज वाला फ्रेंडशिप डे हम लाइफ मस्त है पे मना रहे हैं. फ्रेंड्स के बारे में भी बहुत सारी बातें करने वाले, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है एक गाना सुना देना चाहिए, है ना. इसीलिए चलिए, चांद मेरा दिल से एक अमेजिंग वाला गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, इसे एंजॉय कीजिए. बाकी मैसेज जो है वो आ जाना चाहिए मेरे पास 5 मिनट में 3311063. तो चलिए गाना एंजॉय करके वापस आइए, हम बातचीत जो है वो जारी रखेंगे. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: टाइम चेक
2: ब्रॉट टू यू बाय
1: दानादल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोर।
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:14, दैट इज 10:14। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
4: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वाला गाना आपको मैंने सुनाया 106.3 रेडियो ऑलिफेंट. वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश. शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ. अब देखो यार, मैं आपको ना एक बहुत ही यू नो एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है. सीक्रेट नहीं है लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, या मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं, बिकॉज ये इतनी कोई बड़ी डील है भी नहीं. सो क्या होता है ना कि मेरा बर्थडे अगस्त में आता है. अब तो आप लोगों को खैर पता ही है, हर रोज मैं आकर एक ना एक बार अपने बर्थडे की बात जरूर कर देती हूँ. सो मेरा बर्थडे जो है वो अगस्त में आता है, एंड इंडिया में अगस्त में बहुत बारिश होती है, लाइक बहुत ज़्यादा बारिश होती है. जिस दिन मेरा बर्थडे आता है उस दिन तो बहुत ही बारिश होती है. मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा पाती थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं पहन पाती थी, बिकॉज यू नो जब आप स्कूल में जाते हो कलर ड्रेस पहन के, अपने बर्थडे का फ्रॉक या ऐसा कुछ पहन के जाते हो, तो अक्सर कीचड़ में वो ख़राब हो जाती थी एंड बारिश में गीली हो जाती थी, एंड संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था. एंड आपने अगर घर पे भी बर्थडे पार्टी होस्ट करी है तो भी आपके दोस्त जो है वो आपके घर तक नहीं आ पा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए बर्थडे. सो ये सब जब हो रहा था ना, और मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे यही लगता था, मैं बस यही दुआ करती थी कि यार मेरे बर्थडे पे इतनी बारिश क्यों होती है, मेरा बर्थडे मुझे नहीं चाहिए ऐसे, मेरे बर्थडे पे नहीं पड़नी चाहिए बारिश, मेरा बर्थडे सर्दी में तो गर्मी में आ जाना चाहिए. एंड एंड अब मैं कतर में रहती हूँ, मेरा बर्थडे जो है वो अगले जो है 18-19 दिनों में आने वाला है, एंड कतर में तो ऑब्वियसली बारिश नहीं होती है. सो यहाँ पर मैं हूँ अपने बर्थडे मंथ पे, जहाँ पर बहुत बारिश हुआ करती थी, वहाँ पर मैं आपको ये बताने के लिए आ गई हूँ कि आज भले ही मतलब बाहर जो मौसम है वो थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन उतना नहीं है जितना मेरे बर्थडे मंथ में हुआ करता था. आज लोगों का टेम्परेचर अभी इस वक्त करेंटली हो रहा है 41 डिग्री सेल्सियस. आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. सो यानी गर्मी जो है वो तो रहेगी, साथ में ह्यूमिडिटी जो है वो भी एट इट्स पीक रहने वाली है. हवा से ज़्यादा उम्मीद ना रखें तो ही बेहतर होगा. 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ह्यूमिड एयर जो है वो बहने वाली है. 42 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिडिटी इज मेकिंग इट फील हॉटर. यानी गर्मी वैसे उतनी नहीं है अगर ह्यूमिडिटी थोड़ी कम होती तो, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास आपको होगा. सो बेहतर यही है कि जैसे मिनिस्ट्री ने कहा है कि तब तक सब लोग जो है अंदर रहेंगे, एंड डिलीवरी एजेंट्स जो है वो भी अभी कार से डिलीवरी कर रहे हैं. सो यही कुछ तरीके हैं जिससे हम गर्मी से बच सकते हैं. बाकी एक और अमेजिंग वाला तरीका है जो आप अपना सकते हो, और वो है अपने स्पीकर का, अपने रेडियो का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बढ़ाकर, क्योंकि कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, और इस हीट को बीच करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है. तो जल्दी से जो है वॉल्यूम बढ़ा लो, और जो है अपने रेडियो सेट से एकदम चिपक के ये कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है एंजॉय करो. मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं.

0: क्योंकि लाइफ मस्त है.
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl.

सोनू निगम भाई साहब यार ये क्या करते हो आप यार हमारे साथ इतना ज्यादा अच्छा फील कैसे करा देते हो इतना अच्छा तो मुझे तब भी फील नहीं हुआ था जब मैंने जो है स्कूल में टॉप किया था क्योंकि मैंने किया ही नहीं था सपने में था यार तो अच्छी फीलिंग कैसे आएगी उठने के बाद डिसअपॉइंटमेंट हुआ था मुझे कोई बात नहीं लेकिन चलता है गाइस होता है लाइफ में जो है कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी करनी होती है अगर मैं जो है स्कूल में टॉप कर लेती तो अभी मैं कहीं बैठकर कोडिंग कर रही होती एंड आप लोगों से बात नहीं कर रही होती और आप लोगों का इतना सारा प्यार मुझे नहीं मिल रहा होता। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कसर शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है जहाँ आपकी लाइफ को मस्त बना रही हूँ एंड आप लोगों के मैसेजेस की वजह से मेरी लाइफ मस्त होती जा रही है। सो बहुत सारे लोगों ने क्योंकि मैंने उनसे कहा था आप सबसे कहा था रिक्वेस्ट की थी ही प्यार से कि मुझे जो है प्लीज मैसेज कर दीजिए तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। सबसे पहले तो अभी देखिए लियाकत जी का मैंने जैसे ही अपने चैट खोला लियाकत जी का गुड मॉर्निंग आ गया है। सो गुड मॉर्निंग जी कैसे हैं आप एंड मोहम्मद यूसुफ जी ने जो है वो लिखा है कि कैसा रहा आपका वीकेंड। मेरा वीकेंड तो अच्छा ही गया है एंड अब बात कर लेते हैं अबरार जी से। अबरार जी ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा है एंड हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे का थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू तू ही तो मेरी दोस्त है। ओके कोई बात नहीं नेवर माइंड। ओके सो मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी मौसम की कि मौसम जो है वो किस तरीके से गर्मा गर्म होता जा रहा है। सो मुझे जो है सर ने लिखा है कि स्लोली स्लोली गेटिंग बेटर एंड बेटर। ओके इज दिस बेटर फाइन। उसके बाद मुझे कौसर खान जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओ माय गॉड ऑस्ट्रेलिया तक हमारी आवाज़ जा रही है बस इससे ज़्यादा तो मुझे क्या ही चाहिए। मैं जब स्कूल में थी ना तो मेरे बगल में मेरी जो बेंच मेट थी वही मुझसे बात नहीं करती थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन आएगा जब ऑस्ट्रेलिया के लोग भी मुझसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग मैसेजेस। बस इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को डेडिकेट करते हुए और आप सबको डेडिकेट करते हुए एक प्यारा सा गाना तो मुझे प्ले कर ही देना चाहिए। इसीलिए आ रहा है आपके नज़र आपके रेडियो सेट्स पर अली जफर की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गाना। सो जल्दी से वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपने फेवरेट लोगों को बोल दीजिए कि ट्यून इन कर लीजिए 106.3 रेडियो ऑलिव क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना आने वाला है। सो स्टे ट्यून और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास

देखिए आपने दिल से दुआ करी कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, तो बस बात बन गई है, मैं आ गई हूँ आपकी लाइफ में। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। अब देखिए यार, हर रोज हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ के स्ट्रेस को जो है हम दूर कर सकते हैं। मतलब वो जो छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं ना कि पार्सल अभी तक आया नहीं, या EMI जो है वो भरने की डेट आने वाली है लेकिन सैलरी नहीं आई है, या फिर अभी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ, ये जो छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं ना जो लाइफ में आते ही रहते हैं, इनके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उन्हें जो है कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है अपना मूड अच्छा करने के लिए, जैसे आप एक अच्छी मूवी देखते हैं, वैसे अगर आपका मूड बहुत खराब है तो आपको एक खराब मूवी देखनी है, ब्रेन रॉट मूवी देखनी है एंड उसका गंदा सा रिव्यू जो है वो लिखना है, एंड जब आप वो गंदा सा रिव्यू लिखोगे तो उसमें बीच में अपने फ्रस्ट्रेशन का रीजन जो है वो भी आप जो है एड ऑन कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे यार कशिश ये क्या उल जलूल तरीके बताती रहती हो यार स्ट्रेस कम करने के। यार गाइस ट्रस्ट मी, मैंने ये सारे जो तरीके ये अपना के देखे हैं, मतलब जब मुझे जो है बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है ना तो मैं आप लोगों को कोई भी मूवी का कोई भी बुरी मूवी का गंदा रिव्यू दे देती हूँ तो मुझे ना अच्छा फील होने लग जाता है। सो एक बार ट्राई करो, अपने किसी दोस्त को पकड़ो और उसको जो है किसी गंदी मूवी के बारे में, या जो मूवी आपको अच्छी नहीं लगी है यार ये बहुत ही खराब मूवी थी, उसका रिव्यू देने लग जाओ, देखना आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। आप जब किसी और चीज़ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो, किसी और चीज़ के बारे में बुराई करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में जो बुरी चीज़ हुई है उसको भूलने लग जाते हो। सो बस एक फ्रेश स्टार्ट करो और ऑल ए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर जो है वो इन्जॉय करो। गाने का नाम बल्ला आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, कॉकटेल टू मूवीज है, इन्जॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ गहते रहिए, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: The ultimate Katri adventure. Sukwakif Alkhol.
2: तो जी

0: आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:09, दैट इज 11:09. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुख वाकिफ अलखोल.
2: Hi guys, this is Jorita Gandhi.
3: Jorita Gandhi. Radio Olive, I'm a number one.
2: You are listening to me on Radio Olive.
3: Radio Olive.
2: Gio Bindas.
3: Radio Olive, I'm a number one.
4: Olive Sono Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: माना मैंने मेरा गूगल ऐप जो है मौसम वाला, वो ये कह रहा है कि मोस्टली क्लाउडी रहने वाला है आज मौसम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बारिश हो जाएगी। कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा लिया आपने? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए यार, मुझे ना बात बात पे आजकल गुस्सा आ जाता है, मतलब मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देती हूँ। एंड मुझे ना ये लग रहा था कि यार शायद अब उम्र का तकाजा है कि आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो आपको हर चीज़ पे गुस्सा आने लग जाता है, तभी जो है पापा मम्मी को हमेशा हमने गुस्से में देखा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सो मैंने जो है आज एक रिसर्च पढ़ी एंड फिर उसके बारे में और ज़्यादा डीप स्टडी करी। सो रिसर्च जो है वो ऊपरी तौर पर क्या कहती है, सतह पर क्या कहती है, वो मैं आपको बताती हूँ। सो इस रिसर्च के हिसाब से अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है या आपको थोड़ी भी भूख लग रही होती है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी को भूख लगी है तो उसको गुस्सा ही आएगा या किसी की नींद पूरी नहीं हुई है तो उसे गुस्सा आना ज़रूरी है। हर इंसान के साथ जो है ये चीज़ बदलती रहती है। यानी अगर सपोज मुझे जो है मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है एंड मुझे गुस्सा आता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ हो, सबका अलग अलग यू नो गुस्सा आने का एक पॉइंट होता है। सो रिसर्च जो है वो तो ये कहती है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत गुस्सा आता है। 3311063 ये जो नंबर है इस पर अगर आप व्हाट्सएप कीजिए और अभी व्हाट्सएप कर देंगे ना तो मैं आपके इस गुस्सा आने के पीछे अगर कोई साइंटिफिक रीज़न है तो वो भी पता लगा लूँगी। AI है यार अपने पास, सब पता लगा सकते हैं अपन। सो जल्दी से मैसेज कीजिए मुझे 3311063 कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत गुस्सा आता है। बता सकते हैं आप कि मेरी नींद पूरी नहीं होती मुझे तब गुस्सा आता है, मुझे भूख लगती है मुझे तब गुस्सा आता है, या मैं जब धूप में जाता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, या जब मेरी नाक बंद हो जाती है तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। सो आपको पर्सनली ऐसा कब रियलाइज हुआ है कि यार ये जब चीज होती है पर्टिकुलरली मेरे साथ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है? 3311063 इज द नंबर, जल्दी से आइए मुझे जो है मैसेज कीजिए, उस पर हम बातचीत जो है डिटेल में जारी रखेंगे। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो आपके लिए आ रहा है। सो सबसे पहले तो ये म्यूजिक जो है वो एंजॉय कीजिए एंड उसके बाद मुझे मैसेज कीजिए, हम जरा बातचीत करते हैं आपके गुस्से पर। स्टे ट्यून और कहते रहिए आपकी कशिश के साथ जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

गाने का नाम बादल आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कसर सैन शो आपके लिए. गाने का नाम बादल आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कसर सैन शो आपके लिए.

देखिए, हारना तो था ही, अगर आप लोगों से कंपटीशन में करूंगी तो देखिए मेरा तो हारना बनता ही है ना, क्यों नहीं हारूंगी मैं। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी काशिश एंड शो आपके लिए लाइव मस्ता लेकर आ गई हूँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आपको जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन बस मैं आपको याद दिलाने वाली हूँ। सो जी, आज फ्रेंडशिप्स डे जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे कुछ दिन पहले था, लेकिन हमने सोचा कि यार क्योंकि बचपन से हमेशा अगस्त के फर्स्ट संडे को मैं फ्रेंडशिप्स डे मनाती आई हूँ, तो क्यों ना आज मनाया जाए एंड आप को आपके फ्रेंड्स के साथ मूवी इंजॉय करने के लिए कुछ मैं सजेशंस दे दूं। सबसे पहले तो देखो, ये जवानी है दीवानी, नो डाउट आपको जो है कंफर्ट मूवी है, आप कभी भी उसको देख सकते हो अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के कोई फ्रेंडशिप वाली मूवी इंजॉय करनी है। उसके बाद आमिर खान की अगर हम बात करें तो आमिर खान की ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनमें फ्रेंडशिप हमें देखने को मिली है। सो थ्री इडियट्स आप देख सकते हैं, आप दिल चाहता है देख सकते हैं, ये दोनों ही मूवीज़ फ्रेंडशिप के लिए अमेजिंग है। एंड एक थोड़ी सी डिफरेंट पिक है, अगर आपको थोड़ा सा अगर आप अर्ली 2000 किड है, यानी अगर आपका बर्थडे 2000 से लेकर जो है 2004-5 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं, तो चिल्लर पार्टी एक ऐसी मूवी है जो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, नॉस्टैल्जिया जो है ना वो एकदम ट्रिगर हो जाएगा आपका। सो आप ये मूवी भी देख सकते हैं। एंड अगर और भी कुछ ऐसी फ्रेंडशिप वाली मूवीज आपके पास हैं, मतलब आपको पता है कि यार ये मूवी फ्रेंडशिप वाली है और ये मुझे बहुत पसंद है, सो आप ये हमें बता सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की शिशोरे मूवी जो है वो भी एक बहुत अच्छा पिक हो सकती है अपने दोस्तों के साथ देखने के लिए। ये सारी वो मूवीज़ हैं जो कॉलेज की फ्रेंडशिप पे बेस्ड हैं, सो आप देखिए मूवीज़, इन्जॉय कीजिए। बाकी आपकी कौन सी वाली फेवरेट फ्रेंडशिप मूवी है ये अगर आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, सो ये गाना इन्जॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11. दैट इज 12:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
5: हाय, दिस इज विपाशा बासु.
6: हाय, आई एम राजकुमार राव.
7: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
8: हाय, दिस इज दिशा पार्डी.
4: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM.

0: मेट्रो इन दोनों मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफर। मैं हूँ आपकी कसम शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं हम। अब देखिए यार, क्या होता है ना कि मतलब आपको बस मुझे एक बार अपने दिमाग पे जोर डाल के ये याद दिलाना है कि आपने अपनी कार का जो है ख्याल आखिरी बार कब रखा था, कब उसके बारे में सोचा था। मतलब आप अपने लाइफ के दोस्तों के बारे में एक बार फिर भी सोच लेते हो, दूर दूर के लोगों के बारे में, लेकिन जिस कार को रोज दौड़ाते रहते हो उस कार के बारे में अक्सर भूल जाते हो। इट्स टाइम टू गिव योर कार लव दैट इट डिजर्व्स। तो जल्दी से जो है अपनी गाड़ी को एक बार और दौड़ाइए और वाल्वोलिन के AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस पर जो है चले जाइए। सलवा रोड पे आपको ये मिल जाएगा। इस पे जो है देखिए 150 ईयर्स का ग्लोबल ट्रस्ट है और यहाँ आपको मिलेगी जेन्युइन वाल्वोलिन प्रोडक्ट्स और प्रीमियम क्वालिटी फिल्टर्स भी। और सबसे कूल चीज तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट मिलने वाला है, जिससे आपकी गाड़ी की जितनी भी सर्विस हिस्ट्री है वो हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी। तो नो पेपर वर्क, नो स्ट्रेस। तो देखो यार, वेट किस बात का है, वेट बिल्कुल मत करो और अपनी कार को प्रीमियम केयर दो। आज ही विजिट करो और जो है आप कॉल भी कर सकते हो 7765595 पर। जल्दी से अपना फोन उठाओ, कॉल करो 7765595 पर। देखिए अमेजिंग वाली गुडीज भी आपके लिए जो है यहाँ पर इंतजार कर रही है। तो जल्दी से जाओ और वाल्वोलिन के साथ अपनी कार को एक्स्ट्रा केयर दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैम्पर करो उसे। फिलहाल आपको पैम्पर करने के लिए एक अमेजिंग वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे इंजॉय करो और आगे आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

बिल्कुल इस गाने की तरह। देखिए थोड़ा आपने फैशन गेम जो है वो क्रैक कर लिया है, बस थोड़ा सा बाकी है और वो पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ जो आप और आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। और आज फैशन की बातचीत में जो है थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात भी करने वाले हैं, यानी ये फैशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ इस पर भी हम बात करेंगे। आज देखिए हम किसी एक बहुत इन ट्रेंड चीज की बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो चीज है ये इन ट्रेंड होने के साथ साथ एवर ग्रीन भी है। मतलब कलर में ग्रीन नहीं है, मतलब एवर ग्रीन है, मतलब हमेशा से हमारे दादा पापा ने भी ये जो फैशन है ये फॉलो किया है एंड अब ये ग्लोबल स्टेज पे भी पहुंच चुकी है एंड बहुत लग्जरी ब्रांड्स भी इस चीज को यूज कर रहे हैं। सस्पेंस ज्यादा बिल्ड करते ना करते हुए मैं जो है आपको बताना चाहती हूँ, आज मैं बात करने वाली हूँ मद्रास चेक्स के बारे में। मद्रास इंडिया का जो एक जगह है चेन्नई, उसको पहले मद्रास कहा जाता था और वहां से इन चेक्स की एक चेकर्ड पैटर्न की जो मल्टी कलर की हुआ करते थे उसकी शुरुआत हुई थी एंड उसके बाद जो जिन्होंने ये बनाना शुरू किया था उन्होंने काफ़ी सारे लग्जरी ब्रांड्स को ये डिज़ाइन जो है वो सेल करना शुरू किया। इसीलिए मद्रास चेक्स जो है आपको अलग अलग नाम से जो है बहुत लग्जरी ब्रांड्स में अलग अलग कंट्रीज़ में जो है आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनकी शुरुआत जो है वो मद्रास से हुई थी, इंडिया से यानी चेन्नई से हुई थी। एंड सबसे एक खास बात मैं आपको बताऊं कि जब इन्हें ग्लोबल मार्केट में जो है डाला गया तो एक दो वॉश के बाद कलर ब्लीड होने लग गया, जिसके बाद कंप्लेंट्स आई एंड बहुत यू नो बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी, लोग कंप्लेन कर रहे थे। तब मद्रास चेक्स बनाने वाले इंसान ने जो है वो ये कहा कि अगर आपका गारमेंट जो मद्रास चेक्स वाला है अगर वो ब्लीड कर रहा है उसका, यानी अगर कलर जो है वो निकल रहा है तो वो असली है वरना वो नकली है। एक ऊपर जो है टैग लगा दिया गया है कि अगर ये एक दो वॉश में इसका कलर नहीं निकलने लगा तो यानी आपने गलत मद्रास चेक्स खरीदा है। देखिए यार इसी को बोलते हैं, वो जो एक हिंदी में कहावत पढ़ते थे ना हम, आपदा में अवसर, बस ये वैसे ही कुछ हुआ है। एंड मद्रास चेक्स जो है वो इस वक्त वापस एंट्री मार चुके हैं फैशन गेम्स में, चाहे आप साड़ीज की बात करो, स्कर्ट की बात करो, शर्ट तो एवरग्रीन है ही, अब मद्रास चेक्स बैग्स में आ गए हैं, स्कार्फ में आ गए हैं एंड व्हाट नॉट। मद्रास चेक्स मतलब जो डिज़ाइन है वो अब आपको हर टाइप के गारमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगी। सो अगर आपके पास भी वार्डरोब में कुछ बहुत पहले से मद्रास चेक्स वाला रखा हुआ है सो दिस इज़ द राइट टाइम, निकालिए, ये सही मौसम है उसे पहनने का, बिकॉज इट्स वेरी ब्रीदेबल आपकी स्किन के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा। सो ट्राई कीजिए मद्रास चेक्स। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, फिलहाल एक बहुत ही प्यारा वाला गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, सो इसे इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी विंदास।

0: फोन बूथ मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। मैं हूँ आपकी कसूस शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। लाइफ मस्त है, आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे। आप देखिए, लेकिन मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, आपको चाचा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। सो मैं जाती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाड़ी जो है वो धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और बाकी रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर हम सभी आरजेज आपको मिल जाएंगे, अमेजिंग कॉन्टेंट डाल रहे हैं, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। बाकी नंबर तो आपको याद ही हो गया होगा, 3311063 पर आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर करने के लिए जो है एकदम तत्पर हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, बाय बाय, टेक केयर।
1: Radio

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Olive Music Marathon. एक घंटा non-stop back to back गाने।

0: हाय, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। मॉर्निंग्स एंड

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: से पांच विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

साथ स्वागत है, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, अगर बांध रखी है तो टाइट करके बांध लीजिए, क्योंकि यहां पे हम किक स्टार्ट करने वाले हैं ऑलिव रिचार्ज को। तो यहां पे गाने सुनेंगे, सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो तैयार हो जाइए और अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, शो को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: यार छाता पकड़ते वक्त एक चीज बहुत टायरिंग लगती थी कि बार बार ना एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलना पड़ता था, ठीक है। मगर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारी इस दुविधा को समझ के उसको सॉल्व कर रही है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। मैं बात कर रहा हूं एक अनोखे अम्ब्रेला की, एक ड्रोन पावर्ड अम्ब्रेला जो ऑटोमेटिकली हमारे सर के ऊपर ऐसे रहेगा जिस तरीके से हम मूव करते रहेंगे। एक मैनुअल कंट्रोल की जरूरत है नहीं, हाथ से पकड़ने की जरूरत है नहीं। ऑनबोर्ड कैमराज यूज करके, सेंसर्स यूज करके, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज करके ये यूजर को जो है फॉलो करेगा और अपना पोजिशन जो है उसके ऊपर मेंटेन करता रहेगा। और इस इन्वेंशन ने ये दिखाया कि कैसे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर दिन के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में अप्लाई किए जा सकते हैं ताकि हमें एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिल पाए। उसके साथ साथ इससे जो है पर्सनल मोबिलिटी और स्मार्ट असिस्टेंस टेक्नोलॉजी का एक फ्यूचर भी हमें दिखता है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे ना मैं एक चीज ऐसे सोच रहा था, ठीक है, धीरे धीरे जो है अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, कुछ टाइम बाद यानी कुछ दिनों बाद धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देंगे, तो स्कूल बैग जमाना एक आर्ट होता था, ठीक है। और मैं अपने स्कूल लाइफ में ऑलमोस्ट एक 60-70% टाइम बैग नहीं जमाता था। मैं सारे किताबें ले जाता था, कुछ भी ले जाता था, कभी कुछ भी नहीं ले जाता था, ऐसा था मेरा। क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे साथ कि हमें लगा कि यार अब ऐसा नहीं हो सकता, हम कोई कसर नहीं छोड़ सकते, कोई भी टीचर कभी भी नोटबुक मांग सकता है तो निकाल के रख लो करके। और कॉलेज में आते आते बैग जगाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल गया, क्योंकि कॉलेज में बैग फर्स्ट ईयर में ले जाते थे, सेकेंड ईयर में ले जाते थे, थर्ड ईयर से खाली हाथ जाते थे और किताबें बस हाथ में पकड़ते थे, फोर्थ ईयर में तो वो भी छोड़ दिया, सीधा कॉलेज जाते थे, स्टाफ रूम में से कोई भी पुरानी रिकॉर्ड बुक उठा देते और लेके चले जाते थे। देखिए, ये एवोल्यूशन होता है हर स्टूडेंट का। आपके लाइफ में स्कूल बैग से रिलेटेड कोई ऐसी मेमोरी है तो बताइए मुझे 3311063 पर। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

भाई गाड़ी का ख्याल रखना एक आर्ट है और वैल्वोलिन AMTC इस मामले में आर्टिस्ट है। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं बताना चाहूंगा वैल्वोलिन AMTC के बारे में जो सलवा रोड में है। आप वहां पे जा सकते हैं, वहां पे आपको क्विक सर्विस मिल सकती है, उसके साथ साथ वहां पे ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं जो सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ल्यूब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ओरिजिनल पार्ट्स यूज करते हैं, प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं ताकि आपकी गाड़ी टॉप नॉच रहे। उसके साथ साथ वहां पे डिजिटल कार पासपोर्ट है, ANPR टेक्नोलॉजी से कंप्लीट हिस्ट्री जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड में जाके अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया वैल्वोलिन मर्चेंडाइज मिलेगा। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं, मैं एक नंबर मैं देना चाहूंगा आपको, आप उस नंबर को यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उन्हें और बोलना कि रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। तो नंबर है 7765595 7765595। आप आज ही कॉल कर सकते हैं और वहां पे विजिट कर सकते हैं वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड में, ताकि आप अपने गाड़ी को एक मच नीडेड मच डिजर्व्ड केयर प्रोवाइड करें। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।
1: ये गाना
2: करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: 105.3 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh, fresh on the grill. Slow cooked mandi. Perfectly spiced prawns. And that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns. Crafted with patience. Serve with pride. Dana Dal Bahar. The ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Dil laga aur ho ja recharge. Olive Recharge.
0: Olive Recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जेंजीज धीरे धीरे वापस फ्लिप फोन की ओर जा रहे हैं। और इसमें ट्विस्ट यह है कि फ्लिप फोन का एरा तो शायद उन्हें याद भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, स्टैटिस्टिकली मैं भी जेंजी हूँ, मगर मुझे अच्छे से याद है मेरे पापा के पास एक फ्लिप फोन हुआ करता था और काफी कूल डिवाइस था यार वो। मैं भी चाहता था कि मेरे पास भी एक फ्लिप फोन हो। तो धीरे धीरे पुराने फ्लिप फोन मॉडल्स की ओर जो है जेंजी लोग जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक फ्रीडम भाई, तुम अनरीचेबल रहते हो, और उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटली डिजिटल स्पेस में तुम्हारा प्रेजेंस नहीं रहता है, और उसके साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे कल्चरल शिफ्ट जो है देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लोग ट्रेडिशनल चीजों की ओर बढ़ते जा रहे हैं या फिर पुराने टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा और एक ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन इंटरवेंशन, और उसके साथ साथ एक फ्रीडम लोगों को मिलता था। और मुझे लगता है आजकल के जमाने में, स्पेशली 2026 में, सबसे बड़ा एक रिबेलियस चीज अगर कोई इंसान कर सकता है वो है ऑफलाइन होना। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

भाई ये बात जो मैंने सुनी तो दो मिनट के लिए मैं भी अचंभित रह गया, चकित रह गया कि क्या कोई ऐसे भी कर सकता है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे मैं बता दूं एक इंसान के बारे में जिसने 37 कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स किए, लीगली अपना नाम चेंज किया, अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया ताकि वो अपने एक्स के साथ फिर से रिकनेक्ट कर पाए। बात यह है कि उसको एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिला था कि वो अपने एक्स से नहीं मिल सकता करके, इसलिए इतना तामझाम उसने उठाया ताकि वो अपने एक्स से फिर से मिल पाए, फिर से उसे डेट कर पाए। इससे हमें ये समझ में आता है कि एक उस इंसान को नो की वैल्यू नहीं पता है, नो का मीनिंग नहीं पता है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड नो। उसके साथ साथ बहुत पैसे हैं यार उसके पास, मतलब इतना प्रोसीजर करवाना, ये सब करवाना और वक्त भी बहुत ज्यादा है लगता है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई कौन कहता है कि मर्द एफर्ट्स नहीं डालते, मगर मेरे प्यारे मर्दों ऐसे एफर्ट्स नहीं डालने होते। यही तो कोई समझ नहीं रहा। और देखिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उस बंदे को अथॉरिटीज ने रिकॉग्नाइज किया और उसके ऊपर फिर से जो है लीगल स्क्रूटनी हुई। और इसमें यही डिबेट चलता है कि भाई ऑब्सेशन, पर्सनल बाउंड्रीज, लिमिट्स ऑफ चेंजिंग वन्स आइडेंटिटी किस हद तक जा सकते हैं। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यार मैं एक नंबर देता हूं आपको अभी के अभी, आज के आज इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और बोलिए सुदेव भाई ने बोला है कॉल करने के लिए। ये नंबर है वैल्वोलिन AMTC जो सलवा रोड में है। नंबर है 7765 5954 7765 5954। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वहां विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ओरिजिनल पार्ट्स यूज करते हैं, प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं जो आपके गाड़ी के केयर को अलग लेवल पर ले जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ANPR टेक्नोलॉजी है जहां से आपके गाड़ी की कंप्लीट मेंटेनेंस हिस्ट्री को मेंटेन किया जा सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई इंतजार किस बात का है, आज ही कॉल कीजिए, विजिट कीजिए वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड पर। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: यार ये कहानी सुन के सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत सारे स्कूलों में जो है बुलिंग होती है और अच्छा नहीं होता है। और ऐसे ही मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी जहाँ पे जॉश करके एक बंदा, उसको उसके क्लासमेट्स बहुत बुली कर रहे थे, टॉर्मेंट कर रहे थे, और उन्होंने उसे एक डेयर दिया। उन्होंने बोला कि भाई स्कूल की सबसे खूबसूरत, सबसे फैन फॉलोइंग वाली लड़की को तुझे डेट पे पूछना है करके। और उनको पता था कि वो लड़की जॉश को देख के मना कर देगी, क्योंकि जॉश जो है कन्वेंशनली अट्रैक्टिव लुक रखने वाला इंसान नहीं है, थोड़ा सा चबी सा है, गोलू मोलू सा है। तो ऑब्वियसली उन्हें लगा कि भाई लड़की तो इसे मना कर देगी और बेइज्जत कर देगी करके। मगर जोक तो उनपे था, क्योंकि लड़की ने इमीडिएटली रिकग्नाइज किया कि क्या चल रहा है और उसने पूरे स्कूल को सरप्राइज किया, उसने यस बोला। जो पूरा सेटअप उन्होंने जॉश को ह्यूमिलिएट करने के लिए रखा था, वहां से एक बहुत ही सिंसेयर रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। जॉश और जो लड़की थी वो काफी अच्छे से हिट ऑन कर गए, एक अच्छा स्पेस उन्होंने मेंटेन किया, एंड उसके साथ साथ वो उस पूरे कैंपस के सबसे बिलवेड कपल्स में से एक बन गए। और उनकी स्टोरी को एक परफेक्ट कंक्लूजन मिला जब उन्हें प्रॉम किंग एंड क्वीन करके चूज किया गया। सोच के देखिए, एक प्रैंक से एक इंसान की जिंदगी बदल गई। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: Europe's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: 106.3 Radio Olive. Gio Bindas. यार, मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
2: क्या? कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ, रोज मिलता है.
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: लगा और हो जा रिचार्ज.
0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

तो भाई मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं मगर फॉलो उतना नहीं कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे सीधा जाइए, radioolive.qa सर्च कीजिए और फॉलो बटन दबाइए। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ जरूर इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप जो है हमारे पोस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और हमें सुनते हुए स्टोरी डालेंगे तो हम उस स्टोरी को रीशेयर भी करेंगे। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं हमारे ऐप के बारे में, जिसके थ्रू वो कहीं पे भी हो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, मगर मैं बता दूं कि ऐप जो है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है, तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को बोलो कि इस ऐप को डाउनलोड करें, इस जर्नी में हमारे साथ एक हिस्सा बने। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास। अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हमने लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं। पार्टी धूमधाम से चलती रहेगी और यही बात बोलते हुए हम भी जरा निकलते हैं। मगर जाने से पहले आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपने आप का ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रख। थोड़ी देर में सिमरन यहाँ पे आ जाएगी आपके साथ, तो खुली बाहों से सिमरन का स्वागत कीजिएगा। जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार सिमरन को दीजिए। तो मिलेंगे हम फिर कल दोपहर को 2 बजे, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, खूब हंसिए, खुश रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंद।

का तो पता नहीं, लेकिन पंजाब वाली पंजाबन जो है वो जरूर आ चुकी है। मैं ये जी सुने कहता था कि हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुम्हारे नाल, जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। देखो सिमरन कौर का शो शुरू हुआ है तो हमारे नाम वाला गाना भी बजाएंगे हम। जाने वाली इसी चेयर पे बैठने वाली क्योंकि चार घंटे में भी अपने ही है, और आप जहां पे भी जा रहे हैं तो सिमरन को साथ में रखिएगा। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन ऑन रहनी चाहिए, गाड़ी में रेडियो ऑन होना चाहिए, घर पे रेडियो ऑन होना चाहिए, जो मर्जी करिए लेकिन आपके कान जो है वो हटने नहीं चाहिए क्योंकि अपना शो शुरू हो गया यार। और बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन, कैसा रहा आपका वीकेंड। 3311063 है मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, भेज दीजिए। एंड आज तो फ्रेंडशिप डे है, बधाइयां मिठाइयां तो बहुत सारे पटाखे हैं।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वेलविलीन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेलविलीन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वेलविलीन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765954। वेलविलीन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: Hello to all the listeners of

0: जाए। मलाई मार्ग तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

यार ये दोस्ती वाले गाने कितने इमोशनल करते हैं ना, ये बात बचपन में नहीं समझ लगती। लेकिन जब आपकी एडल्टिंग होती है, असली दोस्ती का मतलब जो है वो आपको तब समझ लगता है कि भाई ये जो इतने सारे लोग हैं जिनको आप हर किसी को जो है वो ऐसा बोल देते हो कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, चाहे आप किसी से नहीं भी मिले हो, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, चाहे किसी से सोशल मीडिया के थ्रू बात हो रही है तो एक मिनट से पहले वो बोल देते हैं वो मेरा फ्रेंड है। यार फ्रेंड मुझे बोलना ना, मुझे लगता है कि जब बड़ी हुई हूँ मैं तब से मुझे ये चीज़ समझ लगी है कि फ्रेंड बोलना ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने किसी को दोस्त बोल दिया तो वो है कि आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा हमेशा जब उसको आपकी ज़रूरत है ना, वो आपको होना पड़ेगा। और जिसको आप दोस्त बोल रहे हो कि मेक श्योर कि वो भी आपके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहे। सो फिर क्या होता है कि जब झुंड होता है ना तो झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं तो आप हर किसी को दोस्त नहीं बोल सकते। तो मेरा ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि शायद मैं उनके लिए ना खड़ी रहूं उन सारी सिचुएशन पे। शायद वो हो सकता है कि मेरे दिल में जो चल रहा है, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, मैं वो सब लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊं। इसीलिए एक या दो दोस्त होते हैं आपकी लाइफ में जिनको पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और कहां पे उनको आपकी जरूरत है और आपको उनकी जरूरत है। सो या जो लोग अपनी दोस्ती में अपने दोस्तों की वैल्यू करते हैं, दोस्ती की वैल्यू करते हैं, मुझे उन लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है यार। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आप बताइएगा कि आपका वो खास दोस्त कौन है जो आपके लिए ऐसा है कि भाई फैमिली के बाद वो फैमिली है यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कहते रहो जियो बिंदास, आने वाले गानों में से।

वाओ आपके साथ एकदम मजा आ गया यार इस गाने को सुन के। 5:36 पैंतालीस सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे

समझा करो, आपकी ये जो कार है इसको प्रीमियम केयर की जरूरत है, इसको प्रीमियम केयर देना चाहते हो तो वेल्वलिन एएमडीसी प्रीमियम क्विक सर्विस ऑन सल्वर रोड पर जाकर चेक करवा लीजिए अपनी गाड़ी को, क्योंकि जेन्युइन वेल्वलिन प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम फिल्टर, और सबसे इंटरेस्टिंग इनकी बात जो है वो एएनपीआर पावर्ड डिजिटल कार पासपोर्ट है, जिसमें आपकी कार की पूरी सर्विस हिस्ट्री रहेगी। और एक फायदा आपके लिए ये भी है कि अगर आपने ऑयल चेंज करवाया वहां पर जाके तो आपको उनकी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके शोरूम जाने से पहले आप वहां पर जाके एक काम कर लीजिए, कॉल कर लीजिए उनको, और कॉल करेंगे ना तो अपना नाम तो बताएंगे, मेरा नाम भी बता देना, बोल देना सिमरन ने बताया था, ठीक है। कॉल करने के लिए 7765954, एक बार फिर से 7765954 पे कॉल कर लीजिएगा। एंड सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कर के जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास यार, मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ, रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.
8: Just

हांजी गुड़ी चमकीली चमचमकीली मैं गरी सुनियो के दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। और आपने देखा होगा ना मॉल में इधर उधर आपको हाला समर जो है वो दिख रहा है और बहुत ही क्यूट सा है ये। और मॉल ऑफ कतर में अगर बात करें हाला समर की तो मॉल ऑफ कतर इसमें क्या है कि सीजनल फैमिली एंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग जो है वो आपको मिल रही है जिसमें बहुत सारी चीजें। ये 30 सितंबर तक बाय द वे चलने वाला है बट ये जो हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल है वो 31 अगस्त तक चलने वाला है। सो दोपहर 2 से लेके रात के 2 बजे तक रात के 10 बजे तक सॉरी मतलब मॉल के अंदर आपको पता है ऐसा गर्मी भी नहीं लगती है एयर कंडीशन है सारा मामला। इसमें बहुत सारी एंटरटेनमेंट एंड जोन एक्टिवेशन है जो कि आपको फ्री मिलेंगे एंड उसके साथ साथ सुपर हीरो थीम डिस्प्ले है वर्चुअल रियलिटी कंट्रोल गेमिंग एंड कॉस्ट्यूम फोटो अपॉर्चुनिटीज है प्ले जोन है बच्चों के लिए एंड शॉपिंग रिवॉर्ड्स हैं जिसमें आप 100 कतरी रियाल में मॉल के अंदर ही कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं तो किड्स एक्टिविटीज आपको मिल रही हैं। 200 कतरी रियाल अगर आप अगस्त में यू नो की शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके पास मौका है कार्ड्स एंड का कैश प्राइजेस जीतने का। सो मेक श्योर कि आप मॉल ऑफ कतर के हाला समर को जरूर एंजॉय करिए क्योंकि मॉल तो अब जाना लगा ही रहता है गर्मी के टाइम पे और कहीं जाएंगे यार। एंजॉय करिए इस गाने को कितने चलने हो सुने हो इवनिंग का टाइम है क्या कर रहे हो यार 3311063।

0: पंजाबी हैं वो फुली अंडरस्टैंड करते हैं और मजा आता है उनको पंजाबी गाने सुनने में. लेकिन मैंने नॉन पंजाबी ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको पंजाबी गाने समझ तो नहीं लगते हैं, लेकिन उनको मतलब वाइब जो है वो इंजॉय करते हैं. और कुछ लोग वाइब के साथ साथ उन पंजाबी गानों को गाते भी हैं, जैसे कि हमारे नॉन पंजाबी एक लिसनर है, उन्होंने मुझे पंजाबी गाना गा के भेजा है.
1: मेरे दिल नाल लारे नी तू लोन वाली ये दिल तेरा जद टूटूगा तो पता लगूगा. मेरे दिल नाल लारे नी तू लोन वाली ये दिल तेरा जद टूटूगा तो टूटे दिल नू सांभी फिर दे के फायदा मुटे यारे नी.
0: थैंक यू सो मच फिलिप जी, नाइस ट्राई. क्यूट हो यार आप लोग बड़े ही यार. बताओ अभी क्या कर रहे हो यार? इवनिंग का टाइम है क्योंकि 4 घंटे शो चलने वाला है और आपस में बातें करते रहेंगे तो ज्यादा मजा आता है. अभी तो खैर 3 घंटे बचे हुए हैं. सो बताइए, मेरा नंबर आपको पता है, कुछ भी कहना चाहते हैं 3311063 पे भेज सकते हैं. सो मौसम क्या कहता है?
2: मौसम
0: सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम. मतलब आज का मैक्सिमम जो टेम्परेचर था वो 46 था. ह्यूमिडिटी 43% है. विंड जो है 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है. भाई साहब मैं तो वेदर ना, जैसे होता है ना कि आप एक महीने तक का वेदर देख लेते हो, उसके आगे का वेदर देख लेते हो, तो जब जैसे जैसे वेदर थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट होता है ना, मतलब टेम्परेचर, उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार. लाइफ में इतनी पॉजिटिव रहती हूँ समझो आप. कि अब की गर्मी पे मेरा कोई ध्यान नहीं है, लेकिन आने वाले महीने में जब टेम्परेचर कम होगा उस पे ध्यान है मेरा. आप भी ऐसी रहा करो यार खुश.

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: देखो दोस्त, उसके दर से कोई भी लौट के खाली नहीं जाता। सूनर और लेटर जो है वो आपको मिलता ही है, क्योंकि बस जब टाइम सही होता है ना, तब ऊपर वाला आपको वो सब दे देता है जो आपको जिंदगी में चाहिए। और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है जो ये आप बार बार मांग रहे, तो आपके अच्छे के लिए है वो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में प्रेयर का टाइम होने वाला है। और दुआ में आप भी याद रखिएगा, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गोर के जरिए। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: और क्या प्यार चल रहा है आजकल, जो ट्रेंड कर रहा है
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: So, Netflix पे एक सीरीज आई है मुसाफिर कैफे, उसके बारे में हर कोई बात कर रहा है भाई। इतना ज्यादा ये मुसाफिर कैफे ट्रेंड कर रहा है और मुझे बहुत सारे स्पॉइलर भी दिख गए ऑलरेडी सोशल मीडिया पर भी। जैसे ही मुझे कुछ मुसाफिर कैफे का कुछ व्यू दिखता है, कुछ भी एक छोटी क्लिप दिखती है, मैं उसको फटाफट से स्वाइप कर देती हूँ क्योंकि मेरे को नहीं देखना है। बट यस, ये पीर प्रेशर में मैंने देखना स्टार्ट कर दिया है। इट्स ट्रेंडिंग, अगर आपने देखा तो आपको कैसा लगा लेट मी नो। सिमरन गौरियाल के साथ बेबी जिया बिंदास।

क्यों थक रहे हो?

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर 1 आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਗਾਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि बगाने दे नाल तो आप फेक भी हो जाने हैं, उनकी स्माइल में स्माइल करते हैं, वो जैसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन अपनों के साथ आप गुस्सा करते हो, अपने सारे एक्सप्रेशन जो है वो उनके सामने दिखा सकते हो, क्योंकि वो आपको बहुत गहराई से समझते हैं। 6:50, 32 seconds स्टूडियो की घड़ी पे।
1: Time check. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Sukwa ke alcohol.
0: तो क्या कहती है?

एक ये दीवानगी जो है वो शॉपिंग की है. एग्जैक्टली दोहा शॉपिंग सीजन फेयर जो है वो चल रहा है और ये 5th of August तक ही है. आज 2 तारीख हो चुकी है, सो आज भी आपके पास टाइम है. आज से भी जा सकते हैं, कल परसों अभी मतलब है आपके पास 3 दिन का टाइम ऑलरेडी है. सो सुबह 10 से लेके रात के 10 बजे तक ये दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में है. टिकट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें आपको जो है वो यू नो 20 कंट्रीज के प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर शोकेस किए जा रहे हैं, और जहाँ पर परफ्यूम्स है, एक्सेसरीज है, होम डेकोर है, शूज है, कार्पेट्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, अबायाज हैं, जो भी बहुत सारी चीजें हैं. सो आप डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हैं. लेकिन आपके पास जैसे कि मैंने बताया कि 5 तारीख तक का ही टाइम है. अब मैं आपको वीकेंड के टाइम बता के तो क्या ही करूंगी, क्योंकि टाइम जो है वो बचेगा नहीं आप लोगों के लिए. बट या 5 तारीख को रुक जाओ, दिन क्या पड़ रहा है, रुको रुको रुको, मेरा हिसाब बहुत खराब है दोस्तों. नहीं वेंसडे है यार, कोई फ्राइडे बीच में आएगा नहीं, तो सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक आप जा सकते हैं. सिमरन कौर है आपके साथ, जियो बिंदास.

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

आई बेब। दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर तुहाडे नाल और 7:05:20 हो चुके।

एक नंबर म्यूजिक बड़ा सही था यार। फिल्म मुझे उतनी याद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इसमें इतना मुझे पता है कि सलमान खान के साथ शाहरुख खान भी थे लास्ट सीन में, एंड शाहरुख खान ने गेस्ट अपीयरेंस की थी। बट प्रीति जिंटा वाला जो रोल था वो तब्बू ने पहले साइन किया था, तब्बू ने समहाउ उस फिल्म में काम नहीं किया, एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद करिश्मा कपूर के पास जो ये था रोल आया, फिर उसने भी इस फिल्म को छोड़ दिया। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास। लेकिन इन बिटवीन अगर आपका ये मन करे कि ये बताने का कि सिमरन अभी मैं यहाँ पे हूँ, सिमरन अभी मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बताओ यार, चाय वाय पी रहे हो, कहीं घूम रहे हो, जिम जा रहे हो, गाड़ी में बैठ के मुझे सुन रहे हो, शेयर करा करो यार 3311106 पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वेलविलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेलविलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वेलविलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वेलविलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।
4: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Akshay Kumar.
7: Hi, this is Anushka Sharma.
8: And I'm Ashwin Varsi.
9: This is Ranveer Singh. Stay tuned.
10: 106.3 Radio Olive. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
11: आरजे सिमरन के साथ।
12: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
13: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
14: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

का टाइटल ये नहीं रखा गया था, इस फिल्म का टाइटल रखा गया था चंद्रलेखा। जी हाँ, चंद्रलेखा ये फिल्म जो थी एक साउथ इंडियन फिल्म का नाम था, तो मतलब फिर नॉर्थ इंडियन मूवी में ये जो टाइटल था वो फिट नहीं आना था, फिर इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया गया। सो रानी एंड सलमान खान की इसमें जो फेक मैरिज वाला सीन रहता है वो एक और फिल्म थी कुवारा, और एक और फिल्म आई थी ढाई अक्षर प्रेम के सेम जो है सेम ईयर जो रिपीट हुआ था, एंड सलमान खान का जो रोल था वो अनिल कपूर के पास पहले आया था, पर संभव फिर उसके बाद ये सलमान खान के पास आया। एंड अगर मैं बात करूं इस फिल्म की स्टोरी की, तो ये स्टोरी जो है इस फिल्म की हर दिल जो प्यार करेगा एक पाकिस्तानी ड्रामा है तुमसे कहना था, ये उससे इंस्पायर्ड थी। सो बहुत सारी बातें हैं यार इस फिल्म के बारे में, आज बस इतनी बता दी है, कल एक नई फिल्म के बारे में बात करेंगे। 7:23:09 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं।

0: रेडियो ऑलिव करके दे रहे हो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: आरजे सिमरन के साथ।
1: पता नहीं आप में से कितने लोगों के साथ ये होता होगा, लेकिन मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि चुप रहना बेहतर होता है। ये मुझे बोलने के बाद समझ में आता है कि भाई मैं ना धबड़ धबड़ धबड़ धबड़ धबड़ चीजें जो है वो बोल जाती हूँ, लेकिन बाद में मुझे लगता है यार सिमरन को, यार तू थोड़ा सा चुप रह लेती यार। ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चुप रहना चाहिए, कभी कभी बोलना जो है वो लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्सिक्वेंसेस उसके कभी कभी हमको भुगतने पड़ते हैं। मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं बोल ही जाती हूँ, ज्यादा ही बोल जाती हूँ, और फिर मुझे लगता नहीं इतना नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आप मेरे जैसे नहीं है, आपको बिल्कुल भी बोलने की आदत नहीं है, तो डार्लिंग मैं आपको बोलूंगी कि बोलिए। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग फिर आपको ये बोलते हैं कि अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, तो आप बोल दोगे, अपना पॉइंट पहले क्लियर कर दोगे। तो जब आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट चल रही होगी इस बात को लेके, तो सामने वाला एटलीस्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बोली। इससे अगर ये लाइन सामने वाले ने बोली, सामने वाला आर्ग्यूमेंट जीत गया और आप हार गए। सो बोल दिया करो, पर इतना भी नहीं कि मेरी तरह बोलने के बाद लगे यार चुप ही रह लेती यार सिमरन कौर, क्योंकि कभी कभी बहुत बोलने की वजह से भी कलेश हो जाते हैं लाइफ में। थोड़ा सोच समझ के बोलो। मेरे साथ सोच समझ वाला होता नहीं, या तो मैं चुप रहती हूँ या मैं बहुत बोलती हूँ। मीडियम वाला काम मैंने रखा ही नहीं है लाइफ में, समझ रहे हो, खराब करती है जबान मेरी मुझे। वापस लौट गया आप लोगों के नाम बोलने वाली हूँ नेम गेम में, तो एंजॉय करिए। तुम ही बंधु ओरिजिनल वन। 3, 2, 1 एंड गो।

जी मैं सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ, मस्त माहौल में आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, तो फिर आपका नाम ले लें। अब एक काम करो दोस्तों, बंदे बन के अपना मेनू नाम दस दियो, ठीक है? आप अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे 3311106 3, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। जी हाँ, एक बार आराम से बता देती हूँ, 3311106 3 नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए। अगर आप चाहते कि आपका नाम मैं अभी अभी बोल दूं तो लिख के भेज दो बंदे बन के, नो हाय, नो हेलो, नो वॉइस नोट, नथिंग, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम मुझे लिख के भेजना। चलिए क्विकली अब मैं आप लोगों के नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। महबूब जट, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद साजिद, शाहबाज, विक्रम, यूवी, जुनैद जी, फारा चांद जी, मोहम्मद जी, हुजैफा जी, अकरम जी, थैंक यू सो मच, आसमा जी, थैंक यू सो मच, इरफान जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद नावीद जी, थैंक यू सो मच, प्रीति जी, थैंक यू सो मच, अतर जी, थैंक यू सो मच, यासीन जी, वेस्ली जी, थैंक यू सो मच, पाली जी, थैंक यू सो मच, हेंजो क्रिस, थैंक यू सो मच, साहिल अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी, थैंक यू सो मच, वसीफ जी, थैंक यू सो मच, राकिब हुसैन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिख के भेजिए 3311106 3 पर। खिजर हयात खान जी, थैंक यू सो मच, शुभो जी, थैंक यू सो मच, सुमन प्रधान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। इंतजार कर रही हूँ, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि यार सिमरन को मैं नाम लिख के भेज देता हूं तो भेज दो यार, अगला गाना शुरू होने वाला है। शाहजान जी, थैंक यू सो मच, रमन प्रीत जी, थैंक यू सो मच, आपने ये नाम उर्दू में लिखा है दोस्त, मैं उर्दू नहीं पढ़ पाती हूं। मंडे क्या लिखा है, मंडे शाहजान, ये क्या होता है यार। गिरीश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। निर्मल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कामरून जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना बस अब। शाहिद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कृष्णा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद आयान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद अनवर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया अब आप थैंक यू लिख सकते हैं, और अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा। अगले घंटे हम खेलेंगे एक चुटकी सॉन्ग, गेट रेडी।

0: खेलो क्योंकि आपने बॉलीवुड से मोहब्बत की है।
1: रेडियो ऑलिव पर एक चुटकी सॉन्ग,
2: एक चुटकी सॉन्ग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: आज का एक चुटकी सॉन्ग 7 सेकंड गया, अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लो। वैसे उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं क्योंकि आप पहचान लोगे कि ये गाना कौन सा है। तो फटाफट से वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, लिखो मत, प्लीज लिखो मत, और रिकॉर्ड करो एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ क्योंकि जबरदस्त इवनिंग सुन रहे हो यार आप। हे सिमरन, अपना नाम बताओ और बताओ गाना कौन सा है। गाओ के बताओगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, लेकिन बोल के बताओगे तो भी चलेगा। एक बार वापस से सुना दूं। चलो नंबर आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, 3311063 पर
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: प्यारा गाना है ना यार, ये उतनी ही प्यारी ये फिल्म भी है, ओम शांति ओम। और एक चुटकी सॉन्ग में मैंने आपको सुनाया था और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं।
1: हेलो हसन खान
0: जी,
1: जो आपने गाना सुनाया है ना, ये साज ये है, कहो ना कहो ये आके बोलती है, ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में तू हमारा है, ए पाके साहिलों का एक नारा है।
0: माहौल बना दिया है सर, थैंक यू।
2: कहो ना कहो
0: ब्यूटीफुल,
2: ये आंखें बोलती है, ओ सनम ओ मेरे सनम, ये है वो गाना,
0: एक नंबर यार।
2: माय नेम इज सुनीता,
0: थैंक यू सो मच डार्लिंग।
3: कहो ना कहो ये आंखें बोलती है, ओ सनम ओ मेरी ओ सहारा है।
0: I like this.
4: Hello.
0: Hi.
4: Simran. My name is Sagar Padia. My song Kaho Na Kaho. Ye aankhe bol rahi hai.
0: Okay, aankhe bol rahi, okay.
5: Hey Simran, how are you? Good evening. It's me Sumi here. Aur jo song ki aapne dhun play kari hai, wo hai Kaho Na Kaho.
0: Kya yaar, aap log bawal ho, aap log kamal ho, bahut sara pyar hai yaar aapko. अमेजिंग, माहौल बना दिया, महफिल सजा दी यार आप लोगों ने, और बिल्कुल सही गाना पहचाना है।

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

कितना खूबसूरत गाना है, अरिजीत सिंह की आवाज, ओए होए सुपर से भी ऊपर। लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने जरूर बताऊंगी।

की तरह कल भी मेरी चाहत को कबूल करिएगा। कल शाम को 5 बजे होती है फिर से आपसे मुलाकात, सो मिडनाइट लाउंज के लिए तैयार हो जाइए। टिल देन खाने पीने रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर किलो।

वेलकम बैक। टुडे इज न्यू वर्क वीक और जिसकी शुरुआत आज सुबह से ही हो गई थी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज। आई नो आज सुबह आपको ऑफिस जाने का मन नहीं था, आज सुबह आपको लग रहा था कि यार दो दिन के वीकेंड के बाद आज फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, बट कल तक वीकेंड था, आज फिर अलार्म्स ऑन हो गए, ऑफिस बैग्स भर गए और लाइफ अपनी नॉर्मल स्पीड पर वापस आ गई। अब जब ऑफिस खत्म हो गया है, शाम को आप या तो अपने घर जा रहे हैं या डिनर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो आपका वर्क वीक होता है, जब नया दिन शुरुआत होता है, इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर वीक। लेकिन ये हर जगह नहीं होता, मतलब जैसे कई जगह पर मंडे इज़ द फर्स्ट डे, पर हमारे कतर में ये संडे

आज आपका नया वीक जो है वो शुरू हुआ है, तो कंपैरिजन नहीं, बस एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। और आज सवाल है आपके लिए कि आप नए वीक की शुरुआत किस चीज से करते हैं, एक कप कॉफी से या एक टू डू लिस्ट से, या सिर्फ सोच कर कि जो होगा देखा जाएगा। 3311106 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिड नाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

कभी कभी एक सेकेंड पूरी हिस्ट्री बदल देता है। 1975 में अमेरिका के बॉस्टन सिटी में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, एक फोटोग्राफर था वहाँ पे, स्टैनली फॉरमैन, बस अपना कैमरा लेकर वो खड़ा था और फिर एक ही पल में बिल्डिंग का फायर एस्केप जो था वो टूट गया। उसी वक्त उसने शटलर दबाया, जो फोटोग्राफ कैप्चर हुई उसने सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं दिखाया, उसने दुनिया को फायर सेफ्टी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया। उस फोटो को वहाँ पर प्राइज मिला, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि कई सारे शहरों में अपने फायर सेफ्टी रूल्स को बदला। और कितनी अजीब सी बात थी कि कभी एक स्पीच नहीं, सिर्फ एक फ़ोटो जो है वो दुनिया को बदल देती है। और मुझे लगता है कि हम सब भी रोज़ अपनी लाइफ की फ़ोटोग्राफ्स बना रहे होते हैं, कैमरा से नहीं, अपने बिहेवियर से। लोग शायद हमारी बातें भूल जाए, लेकिन हमारा मोमेंट्स जो है हमेशा वो याद रखते हैं, हमारा बिहेवियर याद रखते हैं। सो यू टेल मी, आपने ऐसी कौन सी पिक्चर देखी है जिसके बाद आपको लगा हो कि यार ये फोटो देखने के बाद मुझे लगता है कि आई नीड टू चेंज दिस थिंग इन माई सेल्फ और माई होम। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। जियो बिंदास,
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

सो आज की कहानी सुन के शायद आप भी हैरान हो जाओगे। सोचिए, एक एयरपोर्ट बना, रनवे तैयार हुआ, कंट्रोल टावर तैयार हो गया, बैगेज बेल्ट्स भी रेडी हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फ्लाइट्स ही नहीं थी। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं थी, ये एक एयरपोर्ट है, उसकी रियल स्टोरी। एयरपोर्ट तो बन गया स्पेन में, वहाँ पर कैसलॉन करके एक एयरपोर्ट बना, जहाँ पर एयरपोर्ट बन तो गया था, इनॉग्रेशन भी हो गया, लेकिन काफ़ी टाइम तक वहाँ से कोई कमर्शियल फ्लाइट उड़ी ही नहीं। लोग एयरपोर्ट देखने जाते थे, लेकिन प्लेन देखने को मिलता ही नहीं था। और मुझे इस कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ और लेसन मिला कि कभी कभी हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ बना लेते हैं, परफेक्ट ऑफिस, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट प्लान्स, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, दैट इज़ पर्पस। एयरपोर्ट का काम बिल्डिंग बनाना तो नहीं था, लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना था। और शायद हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी है, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ बिजी हैं या वाकई किसी मीनिंगफुल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 3311106 इज़ माई नंबर एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ओलिव पर मिडनाइट लाउंज।

Welcome back and good evening. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Midnight Lounge. आपने कभी सोचा है जब एक सिंगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता है तो उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? एक अच्छा माइक्रोफोन, परफेक्ट हेडफोन या फिर कंप्लीट साइलेंस? लेजेंडरी कंपोजर की बात करते हैं AR रहमान के स्टूडियो के बारे में. बहुत से सिंगर्स एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो की लाइट अक्सर बहुत डिम रखी जाती है, कभी कभी ऑलमोस्ट डार्क. रीजन, ताकि सिंगर सामने खड़े लोगों को ना देख पाए, अपनी नर्वसनेस को भूल जाए और सिर्फ गाने के इमोशंस में खो जाए. और शायद इसीलिए रहमान के गाने जो हैं वो सिर्फ सुनाई नहीं देते, यू नो, महसूस होते हैं. कितनी खूबसूरत सी बात है, व्हेन वी लिसन यू नो AR रहमान सर्स म्यूजिक तो हमें लगता है कि यार कभी कभी क्रिएटिविटी और लाइट, ये सब नहीं, थोड़ा सा अंधेरा चाहिए होता है जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम हो और दिल की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे. शायद इसीलिए हम सबको भी कभी कभी फ़ोन जो है वो बंद करके थोड़ी देर खुद के साथ बैठना चाहिए. हो सकता है कि हमारे बेस्ट आइडियाज़ भी वहीं मिल जाए. सो आई विल से कि आप बेटर काम कब करते हो, जब पूरा शोर शराबा होता है या फिर जब आपको अकेले का थोड़ा सा टाइम मिलता है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, नंबर है 3311106.

बचपन से एक फॉर्मूला सुनते आए हैं, पहले सक्सेसफुल बन जाओ फिर खुश रहना। लेकिन हार्वर्ड की एक इंटरेस्टिंग रिसर्च ने इस फॉर्मूले को उल्टा कर दिया। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। मुस्कान है आपके साथ। सो रिसर्च क्या कहती है बताती हूँ आपको। हैप्पी पीपल आर ऑफन मोर प्रोडक्टिव, मोर क्रिएटिव एंड बेटर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब सक्सेस हमेशा हैप्पीनेस नहीं लाती, कभी कभी हैप्पीनेस भी सक्सेस लेकर आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त स्माइल करते रहो, बस इतना कि रोज की लाइफ में एक छोटी सी खुशी ढूंढ लो, एक अच्छी चाय, फेवरेट गाना या किसी दोस्त का फोन। कभी कभी ये छोटी खुशियां ही बड़े दिन बना देती हैं।

So, कभी नोटिस किया है कि हम किसी को बाय बोलते वक्त ऑटोमेटिकली हाथ हिला देते हैं, लेकिन ये आदत शुरू कैसे हुई? हिस्ट्री बताती है कि बहुत पहले लोग दूर से अपना खाली हाथ दिखाते थे एक सिग्नल कि देखो मेरे पास कोई हथियार नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे वही जेस्चर जो है वो ट्रस्ट का सिंबल बन गया और आज एक छोटा सा वेव, यू नो, एक छोटा सा हेलो भी, गुड बाय भी, और कभी कभी बिना वर्ड्स के टेक केयर भी। कितना अजीब बात है ना, कुछ जेस्चर्स जो होते हैं वो हजारों साल पुराने होते हैं लेकिन इमोशंस जो है वो आज भी वही रहते हैं। सो आई विल से कि आप बताइए, आप किससे मिलते वक्त पहले स्माइल करते हैं, या फिर you know, आपको हैंडशेक करने की आदत है, या सीधे आपको लगता है कि यार यहाँ पर होनी चाहिए एक जादू की झप्पी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

टेन मैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

Welcome back. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with your show ka naam hai. Yes, of course, Midnight Lounge. Aaj, you know, diary ki baat karte hain. Lekin normal diary ki nahi, yahan par baat karte hain Benjamin Franklin ki. Jo scientist bhi the, inventor bhi the aur writer bhi the, theek hai? उनकी डायरी में रोज सिर्फ दो सवाल होते थे. सुबह होता था व्हाट गुड शैल आई डू टुडे और रात को होता था व्हाट गुड आई हैव डन टुडे. बस दो क्वेश्चन, ना लॉन्ग रिजोल्यूशंस, ना कोई मोटिवेशनल कोट्स. और शायद इसी सिंपलिसिटी में उनकी जो स्ट्रेंथ थी, हर अक्सर मतलब चीज़ को वो क्लियर कर देती थी. सो हम पूरी लाइफ चेंज करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी एक अच्छा दिन जो है वो जीने के लिए आपके पास काफ़ी होता है, और फिर एक एक दिन मिलकर अच्छी ज़िंदगी बन जाती है. एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आपको भी रोज़ डायरी में सिर्फ दो लाइन लिखनी हो तो वो क्या होंगी? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311 1063. Stay tuned, Jio, Bindas.

Good evening. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Aur show ka naam hai Midnight Lounge. शो खत्म करने से पहले आज एक बहुत ही खूबसूरत स्वीडिश वर्ड आपके लिए लेकर आई हूँ, विच इज लॉगम. सो बेसिकली इसकी स्पेलिंग है LAGOM, पर इसको बोलते हैं लागम या लॉगम. इसका मतलब है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बस जितना जरूरी हो. आज की दुनिया में हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है, चाहे वो पैसा हो, फॉलोअर्स हो, शॉपिंग हो, अचीवमेंट्स हो. लेकिन स्वीडन की फिलॉसफी कहती है कि रियल हैप्पीनेस मोर नहीं होती, इनफ में होती है. सोचिए जब आखिरी बार आपने रुक कर ये कहा था कि मेरे पास जो है वो काफ़ी है. मतलब मुझे लगता है ये तो शायद कोई कहता ही नहीं आज के टाइम पे. शायद सुकून वहीं से शुरू होता है जहां पर आप ये कहते हो कि जो है काफ़ी है. सो आज का आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आज भी आप दिल से कहते हैं दिस इज इनफ एंड आई एम ग्रेटफुल. इसी के साथ मैं हूँ मुस्कान. आई हैव टू से मुझे जाना होगा. सुन रहे हैं आप मिडनाइट लाउंज. मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह पर विद लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशंस, लॉट ऑफ न्यू कॉल्स. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट. स्टे ट्यून्ड. जियो. बिंदास. Oh.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM बिंदास। The way you move is good, hey, beautiful, hey, beautiful. You don't wanna stop. The way you move is good.

101.3 FM, Gio Bendaz.